ये आकाशवाणी लेह की आवाज़ है। सुबह के 7:32 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए श्रीमती सोनम लाडो से प्रोग्राम रोशनी।

प्रवृत्ति के है कि आप ही चरे। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। अपने लिए तो सभी जी लेते हैं और सुख के साधनों को इकट्ठा करने की आंधी दौड़ में भटकते रहते हैं, परंतु सच्चा सुख दूसरों की सेवा करने या उनके काम आने में है। इससे मनुष्य को एक अलौकिक सुख प्राप्त होता है। परोपकारी मनुष्य मरकर भी अमर हो जाता है। उसका नाम विश्व के इतिहास में सूर्य और चंद्रमा के समान चमकता है। इसी प्रकार के अनेक परोपकारी लोगों का नाम भारत के इतिहास में भी अमर है, जैसे बाबा आमटे, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा आदि। उन्होंने निस्वार्थ भावना से रोगियों, गरीबों, असहायों की मदद की है। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही अपनी परोपकारी परंपरा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। राजा शिवि और महर्षि दधीचि ने परोपकार के लिए अपना स्वार्थ न्यौछावर कर दिया। आधुनिक काल में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह आदि ने देशवासियों के कल्याण के लिए हंसते हंसते अपने प्राण का बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने बारे में नहीं बल्कि अपने देश के करोड़ों लोगों के बारे में सोचा जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। दूसरों को आजादी की रोशनी देकर वे स्वयं अंधेरे में विलीन हो गए थे। परोपकार केवल धन से ही नहीं होता बल्कि अशिक्षितों को पढ़ाना, बीमारों को सेवा करना, समाज से भ्रष्टाचार और अंधविश्वास मिटाना, वृद्ध लोगों की सेवा करना भी परोपकार है। जब सारा संसार स्वार्थ और लड़ाई झगड़ों की दलदल में फंसा है, उस समय केवल भारत ही है जो विश्व को शांति, परोपकार और मानवता का पाठ पढ़ा सकता है। प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सूर्य स्वयं जलकर अपना प्रकाश धरती के प्राणियों को दे देता है। वृक्ष अपने फल स्वयं ना खाकर भूखे लोगों की भूख मिटाने के लिए दान कर देता है। उसी प्रकार चांद अपनी शीतलता का उपहार संसार को देता है। धरती माँ सब कुछ सहकर अपना अन्न जल अपने बच्चों के लिए दान कर देती है। हमें भी सदैव परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए।

0: Das Englisch angeht, das bin ich in Degrim Sanazats, Naji Akashwani Lini Junjitain. Snado Chutzot Gatsunto, Kasata Akashwani Dilini, Samachar Prabhat, Morning News Sanazat.
1: Namaskar, Akashwani se Samachar Prabhat Kisat, mein Farhat Naz. और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोग ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्रवर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में

0: केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी

0: वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, 1 गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ,

0: संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N. रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन तमिलनाडु टर्न हेक्टिक अहेड ऑफ सी जोसेफ विजय लेड TVK गवर्नमेंट्स फ्लोर टेस्ट टुडे। ऑल इंडिया NR कांग्रेस लीडर N. रंगासामी टू टेक ओथ as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPIM State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar described the appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy will be sworn in as the Chief Minister of Puducherry today. At a ceremony to be held at the Lok Nivas, Lieutenant Governor K. Kailashanathan will administer the oath of office in secret.

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?

0: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने आज पुद्दुचेरी की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में ये 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुद्दुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डपड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। वैश्विक ईंधन में कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के बेड़े में 50% वाहनों की कमी का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावित हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने के इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में

आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक शुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों से देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs to take the top position in the points table with a compelling all-round show in Ahmedabad last night. Chasing the target of 169 runs, Sunrisers Hyderabad were bundled out for just 86 runs in 14.5 overs. In today's fixture, Royal Challengers Bengaluru will take on Kolkata Knight Riders in Raipur. The match will begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के कल से नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन की तैयारियां पूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन के चीन दौरे पर। रूस ने समरथ अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। युगांडा में यूवेरी मुस्मेनी ने लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और बैडमिंटन में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में कई भारतीय खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण मुकाबले आज। अब समाचार विस्तार से। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक से पहले डॉक्टर जयशंकर आज नई दिल्ली में कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे आज चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैकेना से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरा वियेरा के साथ भी वे द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम को डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने 2033 तक के लिए नया 8 वर्षीय देश रणनीतिक अवसर कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण आय बढ़ाना, लोगों की क्षमता मजबूत करना और देशभर में टिकाऊ आजीविका के अवसरों का विस्तार करना है। इस अवसर पर आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने बताया कि भारत और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की साझेदारी केवल लंबे समय से ही नहीं बल्कि रणनीतिक तालमेल के लिए भी जानी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। वे कल से पेचिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ शिखर सम्मेलन करेंगे। वे द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिसमें व्यापार पर विशेष बल दिए जाने की संभावना है। ये शी जिनफिंग के साथ ट्रंप की 7वीं आमने सामने की बातचीत होगी और 2017 के बाद किसी अमरीका के राष्ट्रपति की चीन की पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा से पहले ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि इससे आने वाले दशकों में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और युद्ध मंत्री पीट हेक्सेथ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने रणनीतिक सहयोग और आपसी हितों के समर्थन में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में नवीनतम घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता पर गंभीर प्रभाव

के साथ साथ उनसे निपटने के लिए चल रहे प्रयासों की भी समीक्षा की। उधर पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच कतर ने कल ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से संबद्ध एक सशस्त्र समूह की बिबुयान द्वीप में घुसपैठ की निंदा की। अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई दर अप्रैल में पिछले 3 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध से उत्पन्न हुए आर्थिक प्रभाव को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI अप्रैल में सालाना आधार पर बढ़कर 3.8% हो गया, जबकि मार्च में ये 3.3% था। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण फरवरी के अंत से पश्चिम एशिया में हिंसा बढ़ गई है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगी प्रभावित हुए हैं और होर्मुज जलडमरू मध्य लगभग बाधित हो गया है। सामान्य परिस्थितियों में दुनिया का लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस इसी जलमार्ग से गुजरता है। इस रुकावट के कारण दुनिया भर में ऊर्जा कीमतों में भी तेज बढ़ोतरी हुई है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रूस ने समृद्ध अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सफल परीक्षण पर रूसी सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि समृद्ध दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है और इसकी क्षमता सोवियत दौर की वोयवोदा मिसाइल प्रणाली के बराबर है। श्री पुतिन ने कहा कि समृद्ध मिसाइल प्रणाली को इस वर्ष के अंत तक तैनात कर दिया जाएगा। रूस की सामरिक मिसाइल सेना के कमांडर सर्गेई कारकाइव ने कहा है कि परीक्षण ने मिसाइल प्रणाली की क्षमता और उसकी तकनीकी मजबूती को साबित किया है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसेवेनी पिछले 40 वर्ष से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसेवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में शपथ ली। चुनावों में मुसेवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए थे। वहीं विपक्षी नेता बोबी वाइन को 25% वोट मिले। ब्रिटेन में स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी की हार के बाद प्रधानमंत्री की स्टामर पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। उनके मंत्रिमंडल में आवास, समुदाय और स्थानीय सरकार मंत्री मियाट्टा फाहुनबुले ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने श्री स्टामर से देश हित में सही कदम उठाते हुए पद छोड़ने की समय सीमा तय करने का भी आग्रह किया। उधर श्री स्टामर ने पद छोड़ने की बढ़ती मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने आलोचकों को गलत साबित करने का संकल्प लिया। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि इंग्लैंड और वेल्स में हाल में हुए स्थानीय चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 60 से अधिक लेबर सांसद श्री स्टामक से पद छोड़ने का आग्रह कर रहे थे। कई लेबर सांसदों ने सार्वजनिक और निजी तौर पर चिंता व्यक्त की है और श्री स्टामक का नेतृत्व अगले आम चुनाव से पहले पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने कहा है कि ईरान ने युद्ध के दौरान इसराइल ने आयरन डोम मिसाइल रोधी बैटरी और उन्हें संचालित करने के लिए कर्मियों को संयुक्त अरब अमीरात भेजा था। उनके इस बयान से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर रेखांकित होते हैं। दोनों ही देश लंबे समय से ईरान को संधि की नजर से देख रहे थे और संघर्ष में नाजुक युद्ध विराम अभी भी कायम है। नेपाल और भारत के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते को नेपाल के प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया। नेपाल के विधि, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री सुविता गौतम ने सदन में ये समझौता प्रस्तुत किया। ये समझौता इस वर्ष फरवरी में भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। श्री गौतम ने कहा कि समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को कानूनी रूप से अधिक प्रभावी और आसान बनाना है। पश्चिमी और दक्षिणी श्रीलंका में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने द्वीप के पास बने निम्न दबाव से मौसम बिगड़ने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार को पश्चिमी और सबरागुमा प्रांत में 200 किलोमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में आज से भारतीय दल सिंगल्स वर्ग के मुकाबले खेलेगा। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा थाईलैंड की पोनपावी चोचुवोंग के साथ खेलेंगी। वहीं देविका सिहा का सामना जापान की खिलाड़ी से होगा। तारा शर्मा का मुकाबला जापान की हीना केची और इशारानी बरुआ का मुकाबला इंडोनेशिया की थालिया रोसियाना वरियानवान से होगा। भारत ने थाईलैंड में आयोजित BWF सुपर 500 टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 27 सदस्यीय दल भेजा है। उज़्बेकिस्तान में आयोजित एशिया अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों

नमस्कार, ट्यून किया है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज आ गई हूं आपसे बातें करने और आपसे सीधे जुड़ने भी ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए। एफएम गोल्ड AIR delhi@gmail.com पर ईमेल करेंगे या फिर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप 9868 68753 पर। अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, ये तो आपको लिखना ही है, साथ में कुछ शेरो शायरी हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा जो दिल छू जाए, तो बस बात बन जाए। और इसके साथ ही टेस्ट होगी आपकी फिल्मी नॉलेज भी, क्योंकि मैं एक बार फिर लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक खूबसूरत सा म्यूजिक पीस, जिसे प्रोग्राम के बीच बीच में आप सुनते रहेंगे और मुझे बताएंगे कि ये म्यूजिक पीस किस सॉन्ग का हिस्सा है, या फिर आप इसे गाने का प्रिल्यूड भी कह सकते हैं, मतलब गाने का शुरुआती हिस्सा। तो ध्यान से सुनिए आज का वो म्यूजिक पीस। एक बार और सुनिए। तो अगर पहचान लिया है गाना, तो मत कीजिए देर और जल्दी से लिख भेजिए गीत के बोल, और फिलहाल एंजॉय कीजिए ये मस्ती भरा गीत मेरी पसंद से।

आपकी दोस्ती ने हमें जीना सिखा दिया, रोते हुए इस दिल को हंसना सिखा दिया। कर्जदार रहेंगे हम उस खुदा के जिसने आप जैसे दोस्त से हमें मिला दिया। नाज जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु ने ये मैसेज भेजा है और मेरी तरफ से आपको थैंक यू। और अपना फरमाइशी गीत भी लिख भेजा है, लेकिन आज के सवाल का जवाब नहीं भेजा है। और एक खास बात बताऊं, अपनी एक अच्छी आदत के बारे में बताना चाह रही हूं आपको कि मेरी नजर और मेरा ध्यान उसी मैसेज और उसी ईमेल पर टिकता है जिसमें कुछ न कुछ होता है। यानी अच्छी सी शायरी हो, कोई अच्छी सी बात हो, तो वो मैसेज ना मुझे अट्रैक्ट करता है। तो जल्दी से लिख भेजिए कुछ अच्छा सा, क्योंकि सिर्फ नाम पढ़ने में क्या मजा है ना। और इसी के साथ चलिए रुक कर लेते हैं दूसरे मैसेजेस का भी। शमशुर कमर जी ने मैसेज भेजा है शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान के साथ, अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है और आदाब किया है। हमारी ओर से भी आपको आदाब, आपका दिन शुभ हो। लेकिन आज के सवाल का जवाब और साथ में कुछ अच्छा सा लिखकर भेजिए ना, वक्त बहुत कम है। मैसेजेस और ईमेल तो आप बहुत पहले से भेजना शुरू कर देते हैं, लेकिन शेर व शायरी हो या कोई भी अच्छी सी बात हो, वो लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए कोई नहीं, तब तक मैं आपको कुछ सुना देती हूँ। तो कहा यह गया है कि अगर ये कह दो बगैर मेरे जिंदगी नहीं जा रही गुजारी, तो मैं तुम्हारी, या उस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा, तो मैं तुम्हारी। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी। अगर मैं जीती तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारी तो मैं तुम्हारी। अच्छा है ना, ऐसे ही कुछ आपको भी लिखकर भेजना है, ठीक है। और तब तक मैं सुनवाती हूँ एक और गाना जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है कृष्णा पार्क दिल्ली से, सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय की ओर से। तो लीजिए, ये रहा आपका गाना।

जी हाँ, बिल्कुल यही है वो म्यूजिक पीस जिसे आपने सुना और दूसरी बार सुना। इसे सुनकर आपको पहचानना है गाना और मुझे बताना है कि ये किस सॉन्ग का हिस्सा है। बोल आपको लिखकर भेजने हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868868753 पर। और अब पढ़ते हैं ईमेल्स। लिखा है कि अच्छी बातें जो होती हैं ना, वो खुशबू की तरह होती हैं। जी हाँ, जितना बांटो उतना ही दिलों में महकती हैं। राजेंद्र जटोलिया जी ने ये मैसेज लिखा है, उषा जटोलिया चारू जटोलिया के साथ दिल्ली नागलोई से, और अपनी फरमाइश भी इन्होंने लिख भेजी है। अगला मैसेज आया है कहाँ से, मोहाली से, चंडीगढ़ से आया है, सेक्टर 67 से। जी हाँ, 67। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप की ओर से ये मैसेज आया है। और बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी है भाई, तेरी हर बात में एक मिठास शामिल हो, होठों पर हमेशा एक मुस्कुराहट शामिल हो, दुनिया की हर खुशी कदम चूमे तुम्हारे, मेरी हर दुआ में बस यही बात शामिल हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला मैसेज है संदीप मक्कड़ जी का, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहनी की ओर से ये मैसेज आया है व्हाट्सएप पर, पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से। और इन्होंने भी बड़ी ही अच्छी बात लिखी है, कई बार ट्रैफिक में फंसा हुआ आदमी आगे वाले को पीछे वाला बोलता है, टीटी पीपी, और सुबह उठने के लिए अलार्म नहीं लगाना पड़ता भाई हमें, क्योंकि गांव में कोयल की बोलने की जो तीव्र आवाज है वो सुबह उठने के लिए मजबूर ही कर देती है, मतलब है कि मोटिवेशन देती है, इंस्पायर करती है। अगर हम चाहते हैं सभी जगह ऐसा ही हो, तो मरने से पहले जीना होगा, पेड़ लगाने होंगे, और सबसे पहले इंसान बनना होगा। बहुत अच्छी बात कही संदीप जी आपने, मैं आपसे बिल्कुल पूरा पूरा इत्तेफाक रखती हूं। और इसी बात पर अब सुनाने जा रही हूं आपकी ही पसंद का गाना, बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है। पहले तो ये कहना चाहूंगी, प्रेम पर्वत फिल्म से है ये गाना और लता जी की आवाज है, सुनिए।

खर्च हो रही है जिंदगी, आजकल हिसाब नहीं रहता। खर्च हो रही है जिंदगी, आजकल हिसाब नहीं रहता कि कितने गम खरीदे हैं खुशियां समझकर, कितने लम्हे बेच दिए मामूली समझकर। मन भारी सा रहता है और जेब हल्की हल्की। कब कमाएंगे उतना कि जितनी खर्च हो रही जिंदगी। जी बिल्कुल, पैसे खर्च हो जाएं तो कोई बात नहीं, कीमत तो असली है वक्त की जो आप हमें दे रहे हैं अपना, अपने ईमेल्स और व्हाट्सएप के जरिए, और उसके लिए एक बड़ा सा थैंक यू तो बनता है। बातें आगे बढ़ें उससे पहले एक बार फिर सुना देती हूँ वो म्यूजिक पीस जिसे सुनकर आपको आज का गाना पहचानना है। जी तो जवाब लगातार आ रहे हैं आपके, जिन्हें पढ़कर और देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जल्दी से कुछ और ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस शामिल कर लेती हूँ। हमने सवाल का जवाब 10:32 पर दिया है। जी आपने कल भी जवाब शामिल नहीं किया था। ये मैसेज आया है जयराम कोरवाल जी का, और आज के सवाल का जवाब भी लेकर भेजा है इन्होंने। सही है या गलत अब से कुछ ही देर में आप जान जाएंगे, लेकिन फिलहाल उम्मीद है मुझे कि आपकी नाराजगी दूर जरूर हो गई होगी। और कहां से आया ये मैसेज? होली चौक उत्तम नगर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। अगला मैसेज शामिल करते हैं अब्बासी साहब का। सईद अब्बासी जी का ये मैसेज है, जानकारी साझा की है इन्होंने कि गायक मनहर उदास जी का जन्मदिन है आज, और उन्हीं के एक गीत की फरमाइश लिखकर भेजी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस ईमेल के लिए। और अगला मैसेज शामिल करते हैं, अभी तो मुझे सारे आज के सवाल के जवाब ही नजर आ रहे हैं जिसे मुझे अभी रिवील नहीं करना है, लेकिन कोई बात नहीं। नाज मैडम जी आपको प्यार भरा आदाब फरमाइशी गीत के साथ, लिखा है अनु खान ने अदनान खान, फैजान खान और आबाद खान के साथ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मुझे कोई शेर व शायरी नजर नहीं आ रही है, कोई अच्छी सी बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मैं ढूंढ रही हूं एक ऐसा ही मैसेज। फर्स्ट टाइम आई एम सेंडिंग आपकी आवाज, आपने जो शायरी पढ़ी बहुत अच्छी लगी, अब मैं क्या लिखूं? गंभीर बात है, कोई बात नहीं। एस के खन्ना जी का ये मैसेज है, और थैंक यू इस मैसेज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस के मैसेज अभी अभी आए हैं। तो जॉन डिकेस्ट्रो साहब ने मैसेज कर दिया है, लिख रहे हैं कि गीत बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और अपनी पसंद का ही कोई गीत सुनवा दीजिए। रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो के साथ जनकपुरी सहारनपुर से ये मैसेज लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस मैसेज के लिए। और अगला मैसेज है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा जी का, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार के साथ। लेकिन मैं नाराज हूं आपसे, ना आपने सवाल का जवाब लिखा और ना ही कोई शायरी, ना ही कोई अच्छी बात, ये क्या बात हुई? चलिए कोई बात नहीं, अगली बार भेज दीजिएगा। एक और आया है मैसेज जिसे मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूं। लिखा है कि जब अगली बार आओ तो खूब सारे तोहफे लाना, जब अगली बार आओ तो खूब सारे तोहफे लाना, हम सच के आएंगे हमें निहारने के लिए वक्त लाना। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत ही खूबसूरत शायरी है। और एक खास बात बताऊं कि रिमाइंड करवाया है कि क्या ये मैसेज पढ़ा आपने? बहुत बढ़िया। छवि जी का ये मैसेज है जहां तक मैं समझ पा रही हूं, क्योंकि जग नाम इस, हाँ लिखा है,

छवि कॉल रोहन कॉल के साथ सुमन कॉल भी इनके साथ शामिल है। और कहां से आया है ये मैसेज? गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, अब घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है, तो मुझे बताना होगा आज के सवाल का जवाब और उस गाने की लिरिक्स, और साथ में वो गाना भी सुनवाना होगा जिसका प्रिल्यूड आपने सुना। तो दोस्तों, ये प्रिल्यूड हिस्सा है एक चार्ट बस्टर सॉन्ग का। फिल्म है साल 1991 में आई सौदागर, और जिसमें हमारे हीरो बड़े ही प्यार से अपनी हीरोइन को आई लव यू की शॉर्ट फॉर्म यानी ILU यानी ईलू ईलू से रूबरू करवाता है। मतलब कि बड़े डिटेल में वो इस लव्स के मायने समझाता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, आनंद बख्शी साहब के बोल इस ट्रैक की जान है, साथ ही कविता कृष्णमूर्ति के साथ उदित नारायण, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह को आप सुनते हैं और बस सुनते ही रह जाते हैं। तो फिर चलिए, आप और मैं इंजॉय करें ये आइकॉनिक सॉन्ग। उससे पहले जान लेते हैं उन धुरंधरों के नाम जिन्होंने पहचाना इस धुन को और दिया बिल्कुल सही जवाब। रविंद्र कंपैली जी महाराष्ट्र से, सईद अब्बासी बुलंदशहर से, तिलक राज अरोड़ा खुर्जा यूपी से, सुभाष दिल्ली से, कृष्ण कुमार गुप्ता महोबा यूपी से, अनीता वर्मा पीतमपुरा दिल्ली से, सुदर्शन मुखी शांतिनगर सोनीपत से, मेहर अरोड़ा श्रीगंगानगर राजस्थान से, राजकुमार डूडी हिसार से, बोध राज खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से। ये नाम तो देखिए मैं लिख पाई हूं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिन्हें मैं शामिल करने की कोशिश चलिए कर लेती हूं कुछ ही पलों में। बबलेश पवार जी ने भी मैसेज लिखा है और सही जवाब के साथ लिखा है, लिख रहे हैं कि अब मैं बुरा नहीं मानता। मैं हमेशा सुनता हूं सबकी, पर अब मैं बुरा नहीं मानता। कौन क्या कहता है मेरे पीछे इस बात की परवाह नहीं ठानता। चलते चलते राहों पर अगर कोई शूल कभी चुभ जाए, कोई दे दे जख्म जबां से, तो मैं रुकता नहीं चलता जाता हूं। ताने हो या कोई कड़वी बात, सबको खामोशी से सुन लेता हूं। बुरा मानकर अपना वक्त गंवाने से अच्छा मैं अपने ही सुकून के धागे बुन लेता हूं। बहुत अच्छा करते हैं, सबको ऐसा ही करना चाहिए। जी हाँ, डैनी पवार मनीष पवार के साथ गांधी चौक बाड़मेर राज से ये मैसेज लिखा और दिया आज के सवाल का सही जवाब भी। दोस्तों, सॉरी बोलूंगी उन सभी लिसनर्स को जिनके नाम मैं शामिल नहीं कर पाई हूँ वक्त की कमी के चलते, और सुनाऊंगी आपको ये खूबसूरत गीत जिसे आप सबने पहचाना और क्या खूब पहचाना। ठीक है, आप जाएंगे कहीं नहीं क्योंकि इस गाने के बाद होंगे समाचार और मैं फिर मिलूंगी आपसे। कार्यक्रम होगा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: ना रंगासामी कड़वलीन पेयराल उरुदी कूरुदावदु नान नेर्मुगमागवो अल्लदु मरेमुगमागवो ओरुवरुक्को अल्लदु पलरुक्को இந்திய ஒன்றியத்தின் புதுச்சேரி ஆட்சி பரப்பின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் என் கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்படும் அல்லது எனக்கு தெரிய வரும் எந்த செய்தியையும் மேற்கூறிய முதலமைச்சர் என்ற வகையில் என்னுடைய கடமைகளை முறையாக ஆற்றுவதற்கு தேவைப்பட்டவரன்றி தெரிவிக்கவோ அல்லது வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன்.
0: अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सीवयम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा नेता अध्यक्ष वीपी रामलिंगम अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वितरी कड़गम टीवीके के सरकार को विधानसभा में आज बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजे प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे आज चिली के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोपहर बाद वे दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम को डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से भी मिलेंगे। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नाशिक पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नाशिक से शुभम को हिरासत में लिया। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार से पहले मामूली रूप से बढ़त नजर आई और फिर इसमें गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 75 अंक के अधिक की वृद्धि के साथ खुला और बाद में 180 अंक गिरकर 74,360 पर आ गया। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 24,350 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम और आदाब। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ट्यून कर चुके हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जहां मैं आपकी होस्ट और घुमक्कड़ दोस्त नाज हूँ आपके साथ। नजरे घुमाकर देखा है मैंने तो पाया है कि स्टूडियो की घड़ी का है इशारा कि समय हुआ है इस वक्त 11:11 और 30 सेकेंड्स भी हो गए। और जैसा कि आप जानते ही हैं, ये समय है एक दिलकश और खूबसूरत सफर का, विद मेलोडियस ट्रैक्स ऑफ ओल्ड एरा, क्योंकि ये टाइम है तस्वीर का। ठंडा मौसम, हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था, चंद कदम हम साथ चले थे, आंख खुली तो ख्वाब था। लेकिन जनाब, ये कोई ख्वाब नहीं है, शत प्रतिशत आप जागे हुए हैं और मेरे साथ चंद कदम नहीं बल्कि बड़ी दूर तक चलना है आपको। कहाँ, यही तो गैस करना है भाई। ना तो बारिश का मौसम है और ना ही फिलहाल कोई आसार। हालांकि सुबह लग रहा था दिल्ली में कि बारिश होगी, पर अभी फिलहाल मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो ये शेर मैंने क्यों पढ़ा, अगर आप ये सोच रहे हैं, तो भाई ये शेर था आपके लिए एक क्लू उस खूबसूरत जगह के बारे में जहां की सैर आज आप मेरे साथ करने वाले हैं। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है, बादलों और नेचर का घर है, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से मशहूर है और भाई कसम से बड़ी कमाल जगह है। ऑफिशियली सोहरा है इसका नाम। तो फिर देरी का आप क्या काम, सारे हिंट्स दे दिए हैं मैंने और आप समझ ही गए होंगे कि कहां की तस्वीर के दीदार आप मेरे साथ करेंगे आज। जल्दी से लिख भेजिए fmgoldairdelhi@gmail.com पर ईमेल के जरिए या फिर 9868686753 पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, इस अमेजिंग ट्रैक को सुनने के बाद मैं बताऊंगी कि क्या है और कहां है ये जगह।

जी हाँ, बिल्कुल 16 आने सही गेस किया है आपने। टिप टिप नहीं बल्कि मूसलाधार बारिश के लिए दुनिया भर में मशहूर चेरापूंजी चल रहे हैं आप तस्वीर में मेरे यानी नाज के साथ। और किस किस ने किया सही गेस, उनका नाम लिए बिना तो चेरापूंजी में एंट्री मिलेगी नहीं। तो भाई शामिया खान रुड़की उत्तराखंड से, गिरीश पलड़िया हल्द्वानी उत्तराखंड से ही, और अनुराधा गुप्ता जयपुर से, इन्होंने भेजा बिल्कुल सही सही सही नाम। नाउ बैक टू द सोहरा यानी चेरापूंजी, जो भारत के मेघालय राज्य में मौजूद है और राजधानी शिलांग से 35 मील यानी लगभग 55 किलोमीटर के आसपास है। ऑफिशियली इसे इसके पुराने नाम सोहरा से भी जाना जाता है और कहा यह भी जाता है कि चेरापूंजी, इस नाम का मतलब होता है संतरे की भूमि यानी लैंड ऑफ ऑरेंजेस। एक्चुअली लोकल स्टोरीज की माने तो सोहरा इस शब्द का खासी भाषा में अर्थ संतरे की भूमि ही होता है। और खासियत यह भी है कि यहां संतरों की एक खास किस्म मैंडरिन

की बड़े पैमाने पर खेती होती है, जो अपने स्वाद और क्वालिटी के लिए वर्ल्ड फेमस है। माना यह भी जाता है कि नागपुर के मशहूर संतरे भी बेसिकली चेरापूंजी के संतरों के ही सक्सेसर यानी वंशज हैं। और एक खासियत बताऊं, चेरापूंजी मशहूर है अपने खास ऑरेंज हनी के लिए भी, जो असल में संतरों के बागों से ही इकट्ठा किया जाता है, जिसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। और बात तो कुछ अलग इस अगले ट्रैक में भी है, क्योंकि इसे चाहे जितनी बार भी सुन लीजिए, हर बार नया सा ही लगता है।

पहुंचना कैसे है चेरापूंजी, चलिए अब इस पर भी बात हो जाए। तो देखिए, चेरापूंजी का अपना कोई बड़ा रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तो है नहीं, तो यहाँ पहुंचने के लिए बाय रोड ही आपको आना पड़ेगा। और बाय गॉड, जो रास्ते हैं ना यहाँ के, बस कमाल ही है। बाकी शिलोंग और गुवाहाटी के लिए आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, जहां से आराम से बाय रोड चेरापूंजी पहुंचा जा सकता है। ट्रेन से आएंगे तो भी उतरेंगे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ही, जिसके बाहर पल्टन बाजार से आपको बड़े आराम से चेरापूंजी के लिए बसें या फिर टैक्सीज मिल जाएंगी। बस फिर 4 से 5 घंटों के अंदर आप पहुंच जाएंगे चेरापूंजी, और फिर जमकर कीजिए मस्ती। चेरापूंजी के अंदर ट्रेवल करने के लिए प्राइवेट टैक्सीज, शेयरिंग टैक्सीज सब मौजूद हैं। और अगर आप पहुंचे हैं अपने श्रीमान या श्रीमती जी के साथ, तो सजेशन ये है कि रेंट पर लीजिए स्कूटी या बाइक और भूल जाइए सारी टेंशन। अब देखिए, बात सीधी सी है, मंजिल पा लेने में वो मजा कहाँ जो मंजिल तक के सफर में है। तो एंजॉय करते रहिए खूबसूरत चेरापूंजी का ये सफर विद मी, वन मोर लवलीएस्ट सॉन्ग। अच्छा, ये जो सॉन्ग है ना, इसमें भी कुछ खास बात है, अगर जानते हैं तो जरा लिख भेजिए। पर जल्दी

अपने टाइम का चार्ट बस्टर सॉन्ग, और खासियत ये कि गीतकार रविंद्र रावल ने बड़ी ही चतुराई के साथ पुराने दौर की फिल्मों के नामों को पिरोते हुए इस गीत के बोल लिखे हैं, और ऊपर से राम लक्ष्मण जी के म्यूजिक ने तो बस कमाल ही कर दिया है ना। नाउ बैक टू द चेरापूंजी, वापस आ जाइए जहां की तस्वीर आप मेरे यानी नास के साथ देख और सुन रहे हैं। चेरापूंजी की ये तस्वीर यहां के जीवित जड़ पुलों यानी लिविंग रूट ब्रिजेस के जिक्र के बिना अधूरी है जनाब। लोकलाइट यानी खासी जनजाति के प्राचीन इंजीनियरिंग और सब्र का बेस्ट एग्जाम्पल है ये। असल में ये जो पुल है ये लोहे या सीमेंट से नहीं बल्कि फीकस इलास्टिका, जिसे भारतीय रबर ट्री भी कहा जाता है, उसकी जिंदा जड़ों से बनाए जाते हैं। चेरापूंजी की खासी जनजाति इन पेड़ों की एरियल रूट्स यानी हवा में झूल रही जड़ों को बांस या सुपारी के खोखले तनों के जरिए बांध देते हैं और नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ देते हैं।

कमाल की बात यह है कि इन पुलों की उम्र 500 साल तक की भी हो सकती है, तो अंदाजा लगाइए जरा इनकी मजबूती का। हालांकि इस तरह का एक पुल बनने में एवरेज 10 से 15 साल का समय लग जाता है, पर यकीनन ये किसी अजूबे से कम नहीं है। ठीक, जैसे ये अगला सॉन्ग। अच्छा, फिल्म का नाम भी अजूबा ही है। माफ कीजिए, फिल्म का नाम अजूबा नहीं है, फिल्म का नाम तो जीन्स है, गाना, गाने के बोल जो हैं वो हैं अजूबा। फील कीजिए इस अजूबे को और जल्दी से वापस आ जाइए।

डॉक्टर ऋचा सूद सीबीएसई नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं जिसमें कि 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जहां मैं यानी नाज आपको लेकर आ पहुंची हूं चेरा पूंजी, जिसके बारे में एक बात तो बच्चा बच्चा जानता है। अरे भाई, सामान्य ज्ञान के शुरुआती ज्ञान में ही हम ये रट चुके होते हैं कि भारत में सर्वाधिक मतलब कि सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह कौन सी है। जवाब है चेरा पूंजी। लेकिन ऐसा होता क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। ज्यादा बारिश की सबसे बड़ी वजह है चेरापूंजी की जियोग्राफिकल लोकेशन, और साथ में यहाँ के पहाड़ियों की बनावट भी काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है, जो कि फनल यानी कीप के आकार की होती है और तीन तरफ से घिरी हुई है।

तो जनाब होता यूं है कि मॉनसून के दौरान जब बे ऑफ बंगाल की तरफ से नमी से भरी हवाएं नॉर्थ की तरफ जब बढ़ती हैं तो सीधा इन पहाड़ियों से टकराती हैं और जब उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता तो मजबूर होकर उन्हें ऊपर की ओर उठना पड़ता है। फिर लागू होता है बारिश का बेसिक रूल, हवा ऊपर उठती है, ठंडी और कंडेंस्ड होती है और नतीजतन यहाँ भारी बारिश होती है। हालांकि फिलहाल चेरापूंजी के नजदीक ही मौसिन राम एक जगह है जहाँ औसतन चेरापूंजी से थोड़ी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, लेकिन फिर भी चेरापूंजी की बारिश अपने आप में खास है। और खास है ये अगला गाना भी जिसे आप सुनेंगे और इस गर्मी के मौसम में लेंगे चेरापूंजी की बारिश का एहसास।

0: चेरापूंजी के संतरों की बात हो गई, बारिश की बात भी हो गई, रूट ब्रिजेस की बात भी हो गई, लेकिन भाई यहाँ के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स का अगर जिक्र नहीं करेंगे तो बात अधूरी नहीं रह जाएगी। चेरापूंजी की ये खूबसूरत तस्वीर, हो जाइए गंभीर, क्योंकि मैं लेने जा रही हूँ वो नाम, चेरापूंजी आकर जहाँ जाना तो बनता है बॉस। तो इस हरे भरे स्वर्ग में आप सबसे पहले सैर कीजिए नोहकालाई फॉल्स की, जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में शुमार है। साथ ही चेरापूंजी के सबसे फेमस स्पॉट्स में इसकी जगह फिक्स है। इसके अलावा वेई सावदोंग फॉल्स भी देखने लायक है। वेई मतलब तालाब और सावदोंग का मतलब होता है स्क्वायर यानी चौकोर। परतदार चट्टानों से गिरता पानी आंखों और मन को सुकून देता है और चेरापूंजी की तस्वीर में अपना अलग रंग भर देता है। भाई झरनों की बात हो रही है तो डेनथ लेन फॉल्स का जिक्र भी तो बनता है। आपको बता दें कि डेनथ लेन फॉल्स जो है वो चेरापूंजी में बहुत ही मशहूर है और अपने बड़े आकार और तेज आवाज की वजह से ये जाना जाता है। दोस्तों लगभग 80 मीटर ऊंचे इस झरने की अगर मैं बात करूं तो खूबसूरत व्यूज और पक्षी आप यहां से निहार सकते हैं और फिर इसके बाद आप रुक कर सकते हैं सेवन सिस्टर फॉल्स का, जो कि लगभग 315 मीटर मतलब बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरता है। औसत चौड़ाई इस झरने की है 70 मीटर के आसपास और यहां पहुंचने के लिए आपको बिल्कुल देर नहीं लगनी चाहिए। छोड़ देना है हर बहाना और यहां जरूर जरूर है आना।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

अच्छा, खूबसूरत केव्स यानी गुफाओं के मामले में भी चेरापूंजी बहुत अमीर है। घनी हरियाली से घिरा एक बड़ा ही खूबसूरत बगीचा है यहाँ, जो गुफाओं, तालाबों और छोटे छोटे झरनों से भरा हुआ है। मेनली इसके सात हिस्से हैं और हर हिस्सा अपनी अलग कहानी सुनाता है। चेरापूंजी बस स्टैंड के आसपास जब आप हों तो जरूर जाइएगा। यहाँ फेमस मावसमाई केव्स है इस जगह का नाम, क्योंकि वहां से ये सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। चूना पत्थर की गुफाएं आप यहाँ पर देखेंगे, जिसका एंट्रेंस काफी बड़ा है। और फिर आप जाइए अरवा केव्स, जो लाखों साल पहले एकदम नेचुरल तरीके से बनी थी और अभी तक सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है।

Ma'am Naz, for your information, I would like to make addition regarding Cherrapunji. There is a fine view for waterfalling and cloud floating from mountains. I visited to the place. एसके खन्ना जी ने ये मैसेज भेजा है अभी अभी और ये भी लिखा है कि मैम आई एम इन टच विद रेडियो विद आकाशवाणी फॉर लास्ट 60 इयर्स वाओ हाउएवर यू हैव वेरी डिसेंट वॉइस थैंक यू सो मच सर और अनु जी ने भी भेज दिया है मैसेज लिख रही है कि वेन एवर आई गेट टाइम आई विल गो टू चेरापूंजी एंड एंजॉय ऑल वॉट एवर यू एक्सप्लेन इन टूडेज शो थैंक यू सो मच चलिए वापस आ जाते हैं चेरापूंजी और बात कर लेते हैं थोड़ी सी जैसा कि मैंने किया था आपको प्रॉमिस अब आप चलेंगे मेरे साथ चेरापूंजी के फेमस गार्डन्स जिसमें सबसे पहले बात चेरापूंजी के इको पार्क की जो वाकई एक शानदार जगह है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी हर मौसम के साथ बदलती है लेकिन बरकरार रहती है वो चीज जो चीज वो है इस जगह की खूबसूरती इसके बाद

थांग खारंग पार्क भी है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर फैला ये पार्क चेरापूंजी की सबसे मतलब सबसे ही शांत जगहों में से एक है। एक ग्रीन हाउस, एक खूबसूरत फाउंटेन, 2 व्यू पॉइंट्स और एक छोटा पुल आप यहां पर देखेंगे। पिकनिक के लिए ये जगह बेस्ट है। फिर थोड़ा सुस्ता लीजिए और पहुंच जाइए माव फलांग वन भी जहां पर आपको 450 के करीब पेड़ और पौधों की वराइटीज देखने को मिलेंगी। और इतना सब घूमने के बाद जब आपके पेट में चूहे करने लगे डिस्को, तो भाई जल्दी से इन जगहों से खिसको और पहुंच जाओ चेरापूंजी के किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट या होटल में, जहां आपको बड़े ही प्यार से परोसे जाएंगे खासी जनजाति से इन्फ्लुएंस्ड बेहद लजीज पकवान। चावल यहाँ का स्टेपल फूड है, जिसे कई तरह से पकाकर और सजाकर आपको खिलाया जाएगा। नॉनवेज में जादू, दुहने योंग और तुंग तापी फेमस है। वेज आइटम्स में सोहरा पुलाव, पुथारू और पुखलीन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेरापूंजी का खास ऑरेंज हनी, आपको चखे बिना वापस नहीं आना है। और इसी के साथ दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है तस्वीर में आज चेरापूंजी के रंग मेरे यानी नाज के संग आपको जरूर पसंद आए होंगे। फिलहाल जाती हूं मैं इस वादे के साथ कि बहुत जल्द फिर किसी खूबसूरत जगह की तस्वीर के साथ जरूर होगी मुलाकात। अभी के लिए टाटा, खुदा हाफिज और नमस्कार।

0: झगड़ने की क्या बात है?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टरका। समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है। दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए। कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर।
3: जी।
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
3: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए।
2: जी।
3: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं। और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
3: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी।
3: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती हैं और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
3: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
3: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
3: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
3: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें।
3: जी।
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
3: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
3: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
3: जी।
2: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है, इतनी अधिक

0: नौ पर जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी।
5: अब तुम्हारी बारी, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है।
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई। कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे
4: चलो,
5: पानी
4: चलो,
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुईं। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं।
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
1: अब गर्मी अम्मा है।
2: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी

0: यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो
0: हाँ
1: गर्मी भी तो लगनी शुरू हो
0: शुरू हो
1: जाती है।
0: जाती है। हाँ
1: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
0: भाई, मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ
0: आ जाओ,
1: चलो, ना
0: आओ।
1: चलते हैं। चलो।
2: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
0: मैं देखती हूं, तुम लोग यहीं बैठो।
2: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा, आप क्या छुपा रही हैं?
0: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना अम्मा,
0: दिखाओ ना,
1: दे दो।
0: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका
0: सोचो,
1: नाम
0: मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
3: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है। कौन सा फल है?
3: कौन सा फल
0: नहीं समझी?
1: है? नहीं।
0: अच्छा, तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
2: आ, तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
2: बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा,
4: लाओ अम्मा,
2: लो।
1: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
2: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस

0: और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
1: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
2: What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
3: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
0: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो है। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुको, रुको! जाओ वहीं रुक जाओ, रुको!
3: कौन हो तुम?
5: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
3: क्या सूचना?
5: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
3: अच्छा यहीं रुको, चलो कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
5: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
6: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
5: सर हम एक चरवाया है।
6: आगे बताओ।
5: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
6: क्या देखा तुमने?
5: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
6: क्या?
5: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे।

0: उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
1: कितने लोग रहे होंगे?
0: शायद पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
1: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
0: शायद मेरा गाँव है घर कौन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
2: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
3: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
2: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
3: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
2: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
3: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
2: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
3: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
4: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
1: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
4: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
5: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
4: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
1: जी,
6: यस सर।
4: ये मेज के चारों ओर।
1: जी सर।
6: उधर से।
1: हाँ जी।
4: तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
1: जी सर।
4: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
1: जी सर।
4: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
1: जी सर।
4: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
1: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर।

0: इस तरफ से सर। यहाँ से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
2: यस सर।
1: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे। तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
0: जी सर।
1: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
0: सर।
1: कोई शक?
0: नो सर।
1: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
2: यस सर।
0: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
3: धीमे बोलो, धीमे।
0: जी,
3: उन्हें पता ना चल जाए।
0: जी सर।
3: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
0: जी।
3: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
0: ठीक है सर।
3: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
0: जी सर।
3: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
0: जी सर।
3: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे। धीरे। बस अब हम चोटी पर आ गए हैं। कोई भी उठकर नहीं चाहेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
0: हाँ सर।
3: एवरीबॉडी रेडी?
4: यस सर।
3: अब हथगोला फेंको।
1: गुड। वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से।
2: जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था

0: बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से ये कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। In Tamil Nadu, the Tamilaga Vetri Kadagam government, led by C. Joseph Vijay, won the floor test in the Tamil Nadu Assembly with 144 MLAs voting in favour, demonstrating a clear majority in the House. 22 MLAs voted against the confidence motion. The DMK, major opposition party, walked out of the Assembly during the proceedings. Mr. Vijay was mandated by the Governor of Tamil Nadu, Rajendra Vishwanath Adlekar, to prove his majority in the floor of the House after his party was able to secure only 108 seats in the recently concluded assembly election. The Minister of Youth Affairs and Sports, in collaboration with the Minister of Home Affairs, has launched the national-level quiz for the Viksit Vibrant Villages Programme 2026 on the My Bharat platform. The Ministry said that the quiz marks the first stage of selection for youth participation in the Immersive Border Village Engagement Programme scheduled to be held next month. All India NR Congress leader N. Rangaswamy was sworn in as the Chief Minister of Puducherry today for the record 5th term. At a ceremony held at the Lok Nivas, Puducherry, Lieutenant Governor K. Kailashanathan administered the oath of office

जय हिंद फौजी भाइयों, स्वागत है आप सभी का इस फिल्म गीतों के कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं आरजू फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

आइए अगला गीत हम सुनते हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रिया की आवाज़ों में, क्या यही प्यार है फिल्म से। जयलिस रशीद के लिखे हुए इस गीत को संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

अभी आप सुन रहे थे बीवी नंबर वन फिल्म का गीत हेमा सरदेसाई और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे अनु मलिक। आइए अगला गीत हम सुनते हैं हेलो ब्रदर्स फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है सुधाकर शर्मा और फिया सनवर ने और संगीत से संवारा है हिमेश रेशमिया ने।

गीतकार थे राहत इंदौरी और संगीतकार थे अनु मलिक। आइए अगला गीत हम सुनते हैं कच्चे धागे फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। अनंत बख्शी के लिखे हुए इस गीत को संगीत दिया है नुसरत फतेह अली खान ने।

0: ngaji akashwani lene junjik tangin to so tapi sting ne akashwani de lene urden anasul me de news tang do behar samachar sanazat
1: सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क़यादत वाली टीवीके हुकूमत ने रियासती असेंबली में आसानी से अक्सरियत साबित करते हुए एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं मुद्दत के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से पैदा हुए तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर मरकज और रियासतों ने ईंधन की बचत के इकदाम तेज कर दिए हैं। CBSE ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद का इम्कान है। और IPL क्रिकेट में आज शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में वजीराला जोसेफ विजय की क़यादत वाली नई हुकूमत ने आज रियासती असेंबली में 144 अराकीन असेंबली की अक्सरियत साबित कर दी है और एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एडप्पडी पेलानी सामी की क़यादत वाले 22 AIADMK अराकीन असेंबली ने इसके खिलाफ वोट दिया। BJP और PMK से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अराकीन असेंबली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। असेंबली में अक्सरियत साबित करने की करारदाद वजीर आला ने पेश की थी। SP वेलुमनी की क़यादत वाले AIADMK ने हुकूमत की हिमायत की है। मगरबी बंगाल की 18वीं कानून साज असेंबली के 9 मुंतखब MLAs को कोलकाता में हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से MLA के तौर पर हलफ लिया, जबकि नंदीग्राम सीट को खाली रखा गया है। इसके बाद 5 दीगर काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। आम जनता उन्नयन पार्टी के MLA हुमायूं कबीर ने नोएडा सीट के लिए हलफ लिया। जनाब कबीर रेजीनगर सीट से भी जीते हैं। उबूरी स्पीकर तपस रॉय ने उन्हें हलफ दिलाया। आजमूदाकार सियासी रहनुमा और ऑल इंडिया NR कांग्रेस के बानी एन रंगासामी को आज पांचवी म्याद के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। उनके साथ BJP के ए नमसिवम और ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मलाडी कृष्णा राव को भी NDA सरकार में वजीर के तौर पर हलफ दिलाया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लोक निवास में मुनक़िदा एक तकरीब में पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने वजीर आला और दो वजीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर BJP के कौमी सदर नितिन नबीन, BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना, BJP के रियासती सदर VP रामा लिंगम, DMK के कन्वीनर R सिवा, कानून साज असम्बली के साबिक स्पीकर R सिल्वम और 9 मुंतखब अराकान असम्बली और पार्टी के दीगर अहदेदारान मौजूद थे। हलफ बरदारी की तकरीब के बाद जनाब रंगास्वामी वजीर आला के दफ्तर गए और जिम्मेदारी संभाली। नामा निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंगापुर के तर्ज पर पुडुचेरी को तरक्की देने के लिए काम करेगी। पुडुचेरी से बिबिन S नाथन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अंदरून मुल्क हालिया दौरों के दौरान अपने काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद में खातिरखा कमी की है। अलबत्ता स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के प्रोटोकॉल के तहत सभी सिक्योरिटी इंतजाम बरकरार रखे गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद में कमी गुजरात और आसाम के उनके हालिया दौरे के दौरान की गई। यह कदम मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार कम करते हुए इक्तसादी इस्तेहकाम में तआवुन के लिए शहरियों से उनकी अपील के बाद उठाया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर अपने काफिले की तादाद घटाते हुए उसे आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के वज़राए आला ने भी वजीरों, अराकीन असेंबली और अवामी नुमाइंदों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी गाड़ियों की तादाद कम करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आला, वजीरों और दीगर अफसरान की सरकारी गाड़ियों के बेड़े में 50% कटौती करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी काफिलों से गैर जरूरी गाड़ियों को निकाल लिया जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो कल बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ सरबरा सतह की मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि वो चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। इम्कान है कि तिजारत को इस बातचीत में अहमियत हासिल रहेगी। ये शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की 7वीं बिल मुशाफा मीटिंग होगी और ये साल 2017 के बाद से किसी अमरीकी सदर का चीन का पहला दौरा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नतीजे ऑफिशियल वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना रोल नंबर लिखकर देख सकते हैं। इस साल CBSE की 12वीं क्लास के इम्तिहानात 17 फरवरी और 10 अप्रैल 2026 के दरमियान कराए गए थे। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज सुबह चिली के खारजी उमूर के वजीर फ्रांसिस्को पेरेज मैकेन्ना से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि फरीकैन ने तरजीही अशिया की बरामदात को फरोग देने और खिदमात पर मबनी मईशत को आसान बनाने की खातिर बाजारों और सोर्सिंग को वसत देने के मकसद से दोतरफा तआवुन को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। दोनों फरीक कसीर जहती फोरमों पर एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करने पर रजामंद हो गए हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% की तेजी देखी गई। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मुस्तकबिल के मार्केट में जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमत 6% के इजाफे के साथ 1,62,597 रुपये फी तोला रही। वहीं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में चांदी की कीमत 6.4% के इजाफे के बाद 2,96,821 रुपये फी किलोग्राम रही। तहम आज के कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक का इजाफा हुआ। हुकूमत ने सोने और चांदी पर सेस समेत इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% तक का इजाफा कर दिया है। प्लेटिनम पर भी इंपोर्ट ड्यूटी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दी गई है। सरकार ने आज से सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी महसूल में इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना ने एक बयान में कहा है कि सोने और चांदी के जेवराती अज्जा पर 5% महसूल जबकि प्लेटिनम के अज्जा पर 5.4% महसूल आयद होंगे। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों से अपील की थी कि वह मगरबी एशिया में जारी बहरान के मद्देनजर सोना न खरीदें। भारत में इस साल जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात ने आज राजस्थान के लिए लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात, महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में भी गर्म हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्सों और अंडमान और निकोबार जजायर के लिए कल तक शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई भी की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साबिक सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया और गुलहाय अकीदत नजर किए। फखरुद्दीन अली अहमद ने मुल्क के 5वें सदर जमहूरिया के तौर पर 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक अपने इंतकाल तक फराइज अंजाम दिए। वो पहले ऐसे सदर जमहूरिया हैं जिनका ओहदे पर फायज रहते हुए इंतकाल हुआ। CBI की टीम नीट इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले की तहकीकात के लिए जयपुर पहुंच गई है। उसने तकरीबन 2 दर्जन अफराद से पूछताछ की है जिन्हें राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG ने हिरासत में लिया है। इस दौरान SOG ने सीकर और उसके अतराफ के इलाकों में सैकड़ों अफराद से भी पूछताछ की है। पंजाब सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी वजह करने का फैसला किया है ताकि दिफाई अफवाज में उनकी म्याद मुकम्मल करने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी दी जा सके। IPL क्रिकेट में आज शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली TVK हुकूमत ने रियासती असेंबली में आसानी से अक्सरियत साबित करते हुए एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं मुद्दत के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाजे की वजह से पैदा हुए तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर मरकज और रियासतों ने ईंधन की बचत के इकदाम तेज कर दिए हैं। CBSE ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। और بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اس سال جنوب مغربی مانسون کی جلد آمد کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK government wins floor test in State Assembly with comfortable majority. N. Rangaswamy Swaminathan as Chief Minister of Puducherry for a record fifth term. Centre states intensify fuel-saving measures following Prime Minister Narendra Modi's appeal amid global energy crisis triggered by West Asia conflict. CBSE declares All India Senior Secondary Class 12th results. Gold silver prices jump over 6% after government hiked import duty to around 15%. IMD says monsoon likely to arrive early this year. And in IPL cricket, Royal challenges Bengaluru to take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. The newly sworn in government led by Chief Minister Joseph Vijay has proven majority of 144 MLAs and has won the vote of confidence today. 22 AIA DMK MLAs led by Edappadi Palaniswamy have opposed it. 5 MLAs, including the BJP MLA and PMK, remained neutral. DMK and other alliance partners did not participate in the motion and walked out of the assembly. The motion to prove majority was brought by Chief Minister in the assembly. The AIA DMK, led by SP Velumani, supported the government. We have a report.
4: It was a day of expectation in Tamil Nadu politics. The TVK government had to face a floor test in which the AIADMK party faced a split. The former Chief Minister and General Secretary of the party, Edappadi Palaniswamy, criticized the ruling TVK government for encouraging a split in the party. He also criticized the Speaker for allowing the breakaway group of AIADMK leader SP Velumani to speak on the motion of confidence. In his speech, Velumani said that they had to take a stand in support of the government to continue the ideals of

0: to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Central Board of Secondary Education, CBSE, today announced the Class 12th Board examination results. Students can check the results on the official website DigiLocker and Umang app by mentioning roll number. This year, the CBSE Class 12 exams were conducted between February 17th and April 10th, 2026, for lakhs of students across science, commerce, and humanities streams. A CBI team has arrived in Jaipur to probe the alleged leak of the NEET examination paper and questioned around 24 people, rounded up by the Special Operations Group SOG of Rajasthan Police. Meanwhile, hundreds of people have been questioned by the SOG in Sikar and nearby areas as part of the investigation. The Minister of Environment, Forest and Climate Change will organize a series of special events across the country to highlight India's achievements in big cat conservation and promote the goals of the International Big Cat Alliance, IBCA. We have more from a correspondent.
1: As precursor to the Cat Alliance Summit 2026, the program will focus on India's five major wild big cat species: tiger, Asiatic lion, leopard, snow leopard, and cheetah. The event will showcase conservation efforts, challenges, and cooperation between the central government and state governments. The thematic events will be held in different parts of the country, including Gujarat, Madhya Pradesh, Odisha, Sikkim, and Maharashtra. India will host the first Cat Alliance Summit on 1st June this year in New Delhi, with participation expected from heads of state and heads of government of member and observer countries. India is home to over 70% of the world's wild tiger population and has emerged as a global leader in tiger conservation through sustained efforts under Project Tiger and the National Tiger Conservation Authority. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
0: Today, BRICS foreign ministers meeting will start tomorrow in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met Minister of Foreign Affairs of Chile, Francisco Perez Marquena, this morning. In a social media post, he said that both sides held discussions on strengthening bilateral cooperation to diversify markets and sourcing and to promote the export of priority items and facilitate the services economy. Indonesian Foreign Minister Sugiano also arrived in New Delhi early this morning to participate in the two-day BRICS Foreign Ministers meeting. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS of foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Gold and silver prices today witnessed a sharp surge of up to 6%. In the futures market at the multi-commodity exchange, gold for the June contract was trading nearly 6% higher at 1,62,597 rupees per 10 grams, while silver for the July contract was trading around 6.4% higher at 2,96,821 rupees per kilogram, according to the latest reports. However, during intraday trade, gold and silver prices touched gains of up to 8%. The government has raised the import duty, including cess, on gold and silver from 6% to 15%. The import duty on platinum has also been increased from 6.4% to 15.4%. Benchmark domestic equity indices rebounded today and were trading over 0.5% up in the afternoon session. The Sensex advanced 403 points to 74,962, while the Nifty rose 146 points to 23,526 when reports last came in. The broader market at the National Stock Exchange also jumped. The mid-cap 100 was trading 1.3% higher, and the small-cap 100 added 0.7% a short while ago. On the sectoral front, metal, telecommunication and consumer durables stocks lifted the market higher, while selling pressure was witnessed in IT and auto stocks. India can witness early arrival of the southwest monsoon this week. The India Meteorological Department, IMD, said conditions are becoming favorable for the advance of southwest monsoon, likely over parts of South Bay of Bengal, Andaman Sea and Andaman and Nicobar Islands towards the end of this week. According to the Met Department, the southwest monsoon normally sets in over Kerala around 1st of June every year. Meanwhile, several districts of Rajasthan are currently reeling under severe heatwave conditions, with border districts being most affected.
2: The Met Center has issued a red alert for severe heatwave conditions in the border districts of Barmer, Jaisalmer and Phalodi for today. In addition, an orange alert has been issued for 4 western districts, while a yellow alert has been sounded for 6 southwestern districts of the state. Not only the days, but the nights are also witnessing intense heat, with temperatures remaining above 30 degrees Celsius at several places. The prevailing heatwave conditions have affected normal life across the region. According to the Met Department, similar weather conditions are likely to continue for the next 2 to 3 days. With Jitendra Dwivedi's report from Jaipur, Jigyasa Pandey, Akashwani News.
0: IMD has also predicted heat wave conditions over Gujarat, Maharashtra and West Madhya Pradesh till tomorrow. The weather agency has forecast hot and humid weather over coastal Karnataka for the day. US President Donald Trump has embarked on a highly anticipated 3-day visit to China. He will hold a summit with Chinese President Xi Jinping in Beijing from tomorrow. President Draupadi Murmu today paid floral tributes to former President Fakhruddin Ali Ahmed at Rashtrapati Bhavan on his birth anniversary. Fakhruddin Ali Ahmed served as the 5th president of the country, holding the office from August 24, 1974, until his death on February 11, 1977. He was the first president to die in office. On to sports and IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru will take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. The match will begin at 7:30 p.m. Earlier, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs to take the top position in the points table with a compelling all-round show in Ahmedabad last night. Chasing the target of 169 runs, Sunrisers Hyderabad were bundled out for just 86 runs in 14.5 overs. For Gujarat Titans, Kagiso Rabada and Jason Holder scalped 3 wickets. Kagiso Rabada was declared player of the match. And in Thailand Open Badminton, India begins with a positive start today with PV Sindhu and Kidambi Srikanth advancing to the pre-quarterfinals in Bangkok. 2-time Olympic medalist PV Sindhu defeated Chinese Taipei's Tung Ju Tong in straight games 21-9, 21-12 in just 33 minutes. The 6-seeded Indian will next face Denmark's Emily Schulz in the round of 16. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK government wins floor test in State Assembly with comfortable majority and Rangaswamy sworn in as Chief Minister Puducherry for a record 5th term. Centre states intensify fuel-saving measures following Prime Minister Narendra Modi's appeal amid global energy crisis triggered by West Asia conflict. CBSE declares All India Senior Secondary Class 12th results. Gold silver prices jump over 6% after government hiked import duty to around 15%. IMD says monsoon likely to arrive early this year. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru to take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि मौसम विभाग ने कहा इस साल मानसून जल्दी आने की संभावना और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से अब समाचार विस्तार से तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया एक रिपोर्ट
4: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
3: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के पांच अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
5: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
6: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
3: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
7: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ngaje akashwani lene jinjik tan ni mechu zot ni stans karma sumchu charu kasata chu zot ni stans karma ngapchu nga zupa junglurik sanaza skolna sonam rikzine salkane e junglubo sanaza

0: Ibu Akashwani lay in Kasati Yang Chandolma Natsul Sanatsat Central Board of School Education Yang CBSE Jinda Chuknis Peguk Se Doctors Kaptak Zatenok Lob to Kuni Rang Rang Eguk Se Doctors CBSE website DigiLocker Umang App Kunikana Roll Number Kuntang Se Gusat Yan Chisotenok Chocha Jigina CBSE Sharazat Kanang Jin Guksina Lob to Boom Chubdun Stong Tukura Gajik Tustenok Tenang Ne Boom Chonga Tang Stong dun lob toga gyuk tharke lustenok doms gyuk tharke luska ne chat gya thok ne ge chu kyanga ta chuzur ni shu lustenok pomo guni doctors gya thok ne ge chu kyap gya ta chuzur gya tuk yang pucha guni doctors gya thok ne ge chu kyak ni ta chuzur chik sum lustenok ladaks mulam chen me chok sin yot kan ne diring jak su ji pe jaga skep je jimbo chen nams ki ujuk senanga gindun tang chunma tong chik tang dun gya lakzam jik jalzom skyot nas Tanbe Chindak Namski Jabrim Dubazadin Jiktanok Yang Diring Dharma Sinterika Stonbe Ringshal Rimboche Danden Juste Gindun Panamski Stonbe Ringshal Rimboche Jalka Juazatin Jiktanok Zanskar Zong Inanga Mrs. Nistong Ishu Sabdun Inanga Skostiot Kane Supervisor Tang Enumerator Kunla Jak Sumi Jongdar Salches Guzuk Song Tanok Jongdar Inanga Mrs. Sipia Data Lenches De Toga Salkunis Kola Gospel Tanok Zonspon Omka Rajendra Gundesh SP Rikzin Sangrup Tang Sense Sekakur Paspon Bo Yang Zanskari Tesildar Mohammad Hassan Gunni Guzuk Stendel Izat Gwenanga Tusa Zatenok Tukak Lenkan Gula Sungsha Salinjik Tang Zongsponis Misi Sinan Data Gun Nortul Metkan Jik Yongche Sinanga Supervisor Tang Enumerator Gunni Kak Chenmo Yotkan Eskola Ashat Zatenok Inna Tula Zongsponis Kakur Pas Sense Sespon Bo Tesildar Mohammad Hassan Is Koskani Enumerator Gunla Appointment Letter Gun Goste Saltenok Nubre Zongspon Mukul Beniwali, State Bank of India, Tang Jammu and Kashmir Bank, Nubra Yanla, Spon Bogun Tang, Potsos Paji Poda Zate, Muzot Kang Jap Tokuni Toga, Skerjip Zate, Nok Yang Yuljong Senanga, Muli Tokne Jap Tokuni, Stan Pocho Chess Escola, Sundu Zateno. It was Zongspon Nis. Somal Zong in Nang, Muzot Kang, Kak Chenmo Yutkan Escola, Tostuga Zadin Jiktang, Muzot Kang Eldanizu, Tanpocho Jessica, Shesad Tenok, Yang Ekaoni Jeff Toktang, Mimang Sepia Jeff Tokun Escola, Sundu Zatenok. In a Sospenanga, Ultra Simol Bang Tang, Business Correspondent in La Circun Escola, Sundu Zadin Jiktang, Taring Siul Kunina, Muzot Jeff Tok Lamonang Yapo, Top Chukchilla, Muzot Kang Jeff Tokyung Chilla, Shesal Tenok, Yang Mimas Kunina, Muzot Kang Jeff Toks Escola, Hagospel Chil. Da mulzot khas pon bokunla kaspel teno gonpe lopte gergan guni thusdejik bjp thepata shigelchan khaju se tangya potuga jate khongi tunjunjing dotton ni lasna guntanji choche se tonsa bostojung sherigilun potang tongi kuntangya po pinches po thukje chejo jate no itus gergon gunis thusdeya bjp goskyong gunis contractual gergan guni tonsa gunsel tap sepya barson chadme laja jes po to da jate no yang khong gunis ladak senanga zong soma shnga ja ches po bjp goskyong gunla thukje chejo jaden jektang ikani ladak semema la phantok chimol lepche se rewangon jo jate no Sonam Laskung is Fe Gamuli Farm Schoolika Line in Nanga Rashma Chandrik Tang Zobskyorji Lobs Soma Tang Yampo Badget Zaches Tapskun Skola Gospel Teno. Itu Sabat Pagunla Rashma Line in a Badget Zaches Ne Pantox Natsukan Skola Gospel Teno. Sabat Pagunla Rashma Circa Line Chigina Tapches Ne Saun Yungun Chaches Yongstang Galayut Kantang Sazgan Garches Tang Chi Shitap Pantox Kunis Sabat Gun Sabat Pangishu sanga jiga shatsa teno. Sojun kebenedis takchat natsok shigiga nangwa sal teno. Salpel tang tinskele lonpo Ashwini Vishnabi salpel sokspa jipoda zate takchat kunis kola shada zaten jiktang karib tontok ifya minimum support price la nangwa salkani kunis kola shada zate.
1: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया. आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में जिम्मेदारी ली है देश की, तब से एक के बाद एक किसानों के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं. और जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2019 में कि किसानों को अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके और कम से कम 50% मुनाफा मिल सके किसानों को, इसलिए उनके जो कीमत है, खेती की जो कीमत आती है, जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट के ऊपर लागत जो आती है, उस लागत के ऊपर 50% का प्रॉफिट जोड़ के एमएसपी का निर्धारण करने का 2019 में फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। उस फैसले के अनुसार लगातार खरीफ हो, रबी हो, सारे फैसले उसी हिसाब से लिए जा रहे हैं। कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट इक्वल्स एमएसपी, उस तरीके से इसका सारा फैसला लिया गया। तो आज के खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें करीब जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से।
0: दरासी जोंगस्पोन इम्तियाज काचो इंडोर स्टेडियम रनवे पोरी जिसको जातेल दानी जो तंग जानंग जब तो कुन इसको लस्ता तो चल लेना चाहते हैं नो जिसको रिंग दा जोंगस्पोन इस तेरे ले लास कुन डूब चुक चे दा डेलो लास कुन स्पोन भोगुल ना कास पेल चे से लो केल चलते नो तेना चोला कुन इस जेट पी ई ओ दरासी नंगा सलें से डंदूर टालिक था चेस तंग इंडोर स्टेडियम बो सल पा गुन ना गक्स किल मेट पा कोल चुक चे दा कास पेल ते नो इना चोला जोंगस्पोन इस डोन खां सा जांग जाते न्यूट कान बा जिक्स ते डोन खां nang mik cham yut kan tang jenang taldi kun school la zik tok len tenok yang zonsponis sub district hospital le trauma center yang zik school jate jap tok kun la sta tok chalena jate nok ina tang yapo akashwani le ni tanat sultan

भगवान बुद्ध का अवशेष को लेके आने का डिमांड लगातार होते रहते हैं, लगातार मेरे पास भी कई अनुरोध आते हैं। लेकिन ऐसा परंपरा नहीं है देश के अंदर में बुद्ध भगवान का अवशेष को ले जाने का, विदेश में कई बार हम लेके गए हैं। लेकिन क्योंकि पहले भी एक बार लद्दाख में हो चुके हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये बहुत सालों से लद्दाख का लोगों का अनुरोध है कि पिपरवा का भगवान बुद्ध का पवित्र अवशेष को लेकर के लद्दाख आना चाहिए। तो वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का अवसर चल रहा है, बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यहाँ दर्शन शुरू हो जाए लद्दाख के वासियों के लिए, इससे ज्यादा उपयोगी समय नहीं हो सकता है। तो लद्दाख के लोगों के अनुरोध के अवसर ये आज हम लोग देखने को मिल रहा है। वैसे तो पिछले कुछ सालों से हम लगातार विदेश में भी गए हैं और हमने देखा है कि किस नजर से भारत को लोग देखते हैं, बुद्ध का देश है। लेकिन जब मंगोलिया में मैंने देखा और मंगोलिया का लोगों का भारत के प्रति जो विशेष एक नजरिया है कि भारत को देश को गुरु देश मानता है, गुरु, क्योंकि भगवान बुद्ध इस धरती से आए हैं, इस धरती से बुद्ध धर्म का जन्म हुआ और भारत के लोगों के प्रति एक आस्था के रूप में हम लोग एक दूसरे इंसान को जब मिलते हैं तो इंसान इंसान के रूप में देखते हैं। लेकिन भारतीय एज ए इंडियन जो मंगोलिया जाते हैं तो मंगोलिया के लोग भारतीय लोगों को एक आम इंसान के रूप में नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि ये भारतीय लोग भारत से आया है, बुद्ध का देश से आया है, इसलिए इसमें पवित्रता का भाव है। तो जब ये देखा और मैं महसूस किया तब मुझे ऐसा होता है कि इस दुनिया में कई महान व्यक्ति का जन्म हुआ है कि सदियों में ऐसा वक्त आता है कोई एक ऐसा ईश्वर के रूप में अवतार लेकर के आते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए और पूरा लोगों का सोच को ही बदल देता है। ऐसा वक्त बहुत कम आते हैं और ऐसा एक वक्त हमारे पास आया है जब कुशोक बाकुला रिंपोचे का इस पृथ्वी में अवतार वापस आया। कुशोक बाकुला रिंपोचे का जो योगदान है उसको सिर्फ किताब में पढ़ने से भी पर्याप्त नहीं, कहानी तो सुना होगा कुशोक बाकुला रिंपोचे का कंट्रीब्यूशन किया है लद्दाख के अंदर में, देश के लिए, देश से बाहर मंगोलिया और भारत का रिश्ता, मंगोलिया में फिर से बौद्ध धर्म का पुनर्जीवित, ये तो किताब में पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका महत्व को अगर समझना है तो आपको मंगोलिया भी जाना पड़ेगा और कुशोक बाकुला रिंपोचे के जिंदगी में अंदर झांक के देखना होगा, तब समझ में आएगा उसका गहराई क्या है। और जब लद्दाख में कुशोक बाकुला रिंपोचे का उदय हुआ तो ये आसान नहीं था कि दोगरा जब यहाँ रूल करते थे और ऐसा में कुशोक बाकुला रिंपोचे ने जो रिफॉर्म्स लाए मॉडर्न एजुकेशन, पारंपरिक लद्दाख की जीवन शैली को बचाए रखने के लिए, बहुत परंपरा को जीवित रखने के लिए और फिर दुनिया से जुड़ने के लिए, फिर आगे जाकर के वो पॉलिटिक्स में आए। उन्होंने कहा है कई किताब में मैंने पढ़ा है, राजनीति में आने के बाद उसका आध्यात्मिक जीवन में एक ठहराव आ गया है, लिमिट आ गया है कि अपना स्पिरिचुअल जो परसूट नहीं कर पाया क्योंकि वो राजनीति में आना पड़ा लद्दाख के जज्बा से। और उस समय लद्दाख का आवाज बन करके कुशोक बाकुला रिंपोचे ने दुनिया का सामने में बोलना शुरू किया। मैं तब से लेकर के अभी जब देखता हूँ कई बदलाव आया है। अगर मैं भगवान बुद्ध का जन्म से लेकर के आज तक देखे हमारा हिस्ट्री को लगभग 2550 पार हो गए हैं हम, तो इसमें कई उतार चढ़ाव देखते हैं। और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो तो जानते हैं लेकिन जो युवा है वो भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। जितना भी साइंटिफिक एज में हम आज है, जितना भी टेक्नोलॉजी युग में हम आए, लेकिन हमारा आध्यात्मिक, हमारा पारंपरिक, हमारे इतिहास को हम जुड़े रहना चाहिए। तो मैं जब देखता हूँ कि बुद्ध भगवान किस परिस्थिति में जन्म हुए ये तो सबको मालूम है, कितना घर छोड़ के जाने के बाद बोध गया में संबोधि प्राप्त करने तक जो स्ट्रगल किया, उसके बाद जब बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ देश दुनिया में, तो मैं जब अभी मैं राजगीर जाकर आया पूरा मेरा माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट के मंत्रियों को मैंने वहां बुलाया, हमारा चिंतन शिविर था, तो मैं सुबह सुबह राजगीर में वो जंगल में पैदल गए घूमने के लिए वहां के अधिकारियों को लेकर। तो वहां बुद्ध भगवान का मूर्ति और उसका 5 जो प्रमुख उनका अनुयायी है उनका मूर्ति देखा। आज से लगभग 2600 साल पहले जब बुद्ध भगवान उस जगह में चले थे
तो किस परिस्थिति में वो जगह था और कैसे लोग रहते थे और बुद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ, उसको मैं लिंक करता हूँ। जब मंगोलिया में बुद्ध धर्म खत्म हो चुके हैं और बाकुला रिंपोचे ने बुद्ध धर्म को कैसे पुनर्जीवित किया, 70 साल तक कम्युनिस्ट राज के बाद जब बुद्ध धर्म फिर से पुनर्जीवित हुआ तो बदलाव क्या है वो मैंने देखा। फिर मैंने हिस्ट्री को देखा, कई चीज जुड़े रहते हैं। पूरा 8वीं-9वीं सदी तक भारत का स्टेट रिलीजन बुद्ध धर्म रहा। उस समय के शहंशाह जो भी रहा होगा बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, तब तक धर्म हमारा प्रमुख राज धर्म बन के रहा, वरना वो चला नहीं। और उस समय बाहरी आक्रमण शुरू हो गया और हमारा राजाओं का भी बदलाव हो गया तो बुद्ध धर्म लगभग समाप्त हो। तो यहाँ तक भी सिर्फ लोग सोचते थे कि ये हिस्ट्री बुक में रह गया। मैं जापान गए, जब हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे भारत का प्रतिनिधि करने के लिए जापान भेजा और संवाद चल रहा था उस समय जापान और भारत के बाद, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2004 और शिंजो आबे बड़ा नेता जापान के अभी तक इस दुनिया में नहीं, दोनों का बीच में पहले मुलाकात हुए तो ये बात हुआ कि बुद्ध धर्म के माध्यम से जापान और भारत का मिलन होना चाहिए।

कार्यक्रम मिलन को तय किया, उसका नाम संवाद। संवाद का पहला कार्यक्रम मैंने हिंदुस्तान का लीड करके गया, बड़ा डेलीगेशन था। हमारे साथ में जो फॉर्मर आईबीसी के प्रेसिडेंट लावा लोपसांग जी भी हमारे साथ में थे। जब जापान के प्रधानमंत्री जी को मिले, हैंडशेक किया और मैंने बताया कि मैं एक बौद्ध हूँ, वो कम से कम 15 सेकंड तक सोचते रह गया, आप बौद्ध हैं, आर यू बुद्धिस्ट? तो वो जब इतना ताजुब हो गया कि मैं एक बौद्ध हूँ, तो मेरे मन में भी उसी वक्त मैंने यही सोचा कि ये लोग समझते हैं कि भारत में बुद्ध धर्म का जन्म तो हुआ लेकिन बुद्ध धर्म मानने वाले या कोई बड़ा नेता के रूप में कोई नहीं बने, कभी कैबिनेट मिनिस्टर तो रहा नहीं भारत में कोई बौद्ध। मैं पहला कैबिनेट मंत्री है जो बुद्धि से इस देश, जो बुद्ध का देश है, वहां हमारा पहले का इतिहास पर छोड़ दीजिए, अब अभी आजादी के बाद 1947 में जब भारत को आजादी मिला, तब से लेकर के जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लॉ मिनिस्टर छोड़े 1951 में, और बाबा साहब जब मिनिस्टर थे तो वो बौद्ध नहीं बने थे, वो तो 1956 में दीक्षा लिया नागपुर में, अपने लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो मैं भी ये सोचते रहा कि इतने साल बाद बुद्ध के देश में मैं पहला बुद्धिस्ट जो इस देश का कैबिनेट मिनिस्टर बना। कई मिलते रहते हैं, मेरे पास आते रहते हैं, तो वो कितना खुशी होता है कि कम से कम भारत जो बुद्ध का देश है वह एक सीनियर मिनिस्टर है। हमारे यहाँ से एक तो एमपी आते थे बुद्धिस्ट जो, या कभी किसी काल में डिप्टी मिनिस्टर बना दिया, या ज्यादा से ज्यादा राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया, लेकिन कैबिनेट में दर्जा नहीं मिलता है। उस जमाने में तो राजा महाराजा, आज के दिन में कैबिनेट देश को चलाता है, तो वहां हमारे कोई था ही नहीं, तो हमारा सुनेंगे कौन? तो मैं समझ सकता हूं कि बाकुला रिंपोचे जब असेंबली में बोलने के लिए भी मशक्कत करना पड़ता था, अनुरोध करना पड़ता था कि मुझे बोलने दिया जाए, क्या परिस्थिति में हम लोग पहुंचे थे। तो अभी धीरे धीरे धीरे परिस्थिति जो है बदल रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन गए, वो यूनाइटेड नेशन में जब प्रधानमंत्री जी का भाषण है, उसको मैं मानता हूं कि वो एक डिफाइनिंग भाषण है, क्योंकि इतने साल बाद, एक सेंचुरी के बाद, सम्राट हर्षवर्धन के बाद राजा नहीं है मगर लोगों का चुना हुआ प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन में जाकर के भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बोला तो मेरा मन में विश्वास हो गया कि हाँ, अब देश का मुखिया बुद्ध धर्म को अपना पॉलिसी का हिस्सा बना करके देश को आगे ले जा रहे हैं। और हम जब मंत्री बने उससे पहले भारत सरकार का बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा का कोई आयोजन नहीं होते, लोग अपने अपने घर में बाती जला करके बुद्ध भगवान का चरण में हम लोग ऑफर करते, और अलग अलग बौद्ध विहार में पूजा चलते, मॉनेस्ट्री में पूजा चलते, भारत सरकार का कोई कार्यक्रम ही नहीं होते थे। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री जी को जिक्र किया कि सर, हमारा देश में भारत सरकार का बुद्ध जयंती में कोई कार्यक्रम नहीं होते, तो मेरे चेयरमैनशिप मैंने लीड रोल लिया, हम लोगों ने भारत सरकार ने कार्यक्रम किए, तालपत्रा स्टेडियम में पहली बार भारत सरकार ने बुद्ध जयंती वैसाख बुद्ध पूर्णिमा को हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया, और उस समय उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत खूबसूरत भाषण दिया, और उन्होंने दुनिया को बताया कि अगर कोई भी देश, कोई भी नेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, विश्व का अगर सुपर पावर बनना चाहता है, बड़ा नेता बनना चाहता है, आर्थिक सुपर पावर, बहुत ही ताकतवर राष्ट्र बनना चाहता है, अगर बुद्ध के रास्ते पे नहीं चलोगे तो नाश हो जाएगा, दुनिया को बर्बादी लाएगा, तबाही आएगा। अगर आप ताकतवर हैं और बुद्ध के रास्ते में चलेंगे तो दुनिया में आबाद होगा, शांति कायम होगा, दुनिया में सबको भाईचारा का भाव कूद कूद के आएगा मन में। ये बात लगातार जब भी किसी भी मेजोरिटी बुद्धिस्ट कंट्री में जाते हैं तो बुद्ध का प्रतिमा और बोध गया से बोधि वृक्ष का पत्ता लेकर के वहां बैठ, और मैं जितना भी बौद्ध देश में जाता हूँ, हमारा जो ऑफिसर लोग ये ध्यान रखता है कि मैं बुद्ध का प्रतिमा और बोधि ट्री का, हमारा बोधि वृक्ष का पत्ते को हम लेकर के बैठ, और कभी कभी वो श्रीलंका से वापस भी आए, जो बोधि वृक्ष श्रीलंका में लगाया वो पत्ता लेकर के फिर नासिक में लगाया, पुणे में।

उस समय में भी किया कार्यक्रम किया। अभी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बुद्ध धर्म मानने वाला महाराष्ट्र में है, विशेष करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के वजह से। तो एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, एक तरफ कुशल पाटिल, ये दो ऐसा पिलर है। मैं मानता हूं कि मोदी जी का घोषणा जो हुआ कि बुद्ध के रास्ते में भारत चलेंगे, उस घोषणा से पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कुशल पाकुड़ा ने पूछे दो टॉलेस्ट पिलर है, मजबूत स्तंभ है मैं मानता। इसलिए जब यहाँ बुद्ध भगवान का अवशेष जब आज यहाँ लद्दाख में आए, आपको दर्शन करने का मौका मिल रहा है, यहाँ से वो संस्कार भी जाएंगे, ऐसे समय में मुझे भी आपका बीच में आने का मौका मिला, तो मैं मानता हूँ कि ये ऐसा पल है जो हमेशा हमेशा के लिए हम लोग याद रखेगा। मेरे डिपार्टमेंट से मैंने कई लद्दाख के लिए सोचा हुआ है, धीरे धीरे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कई स्कीम हमने लद्दाख के लिए दिए है, क्योंकि मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री भी हूँ, इसलिए मुझे ये बताना जरूरी है कि हमारा देश में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, सिख है, जैन है, पारसी। तो हमारा जो 30 कम्युनिटी है उसका भी मैं खुद एक संबंधित मंत्री होने के नाते इसका भी मैं देखभाल करता हूँ। तो मैंने बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत कई स्कीम योजना चलाए। हमारा यहाँ जैसे मुसलमानों में हज होते हैं वो उस तरीके के नहीं है, हम लोग का जाते हैं, हम लोग भी स्पिरिचुअल टूर में जाते हैं, मगर हज एक व्यवस्थित तरीके से चलते हैं, उसमें लाखों लोग जाते हैं, तो हज का भी व्यवस्था हमारा मंत्रालय ही करते हैं। तो बौद्ध के लिए हमने बुद्धिस्ट डेवलपमेंट जो प्लान बनाया है उसके तहत हिमालयन क्षेत्र में जितना बौद्ध मानने वाले लोग हैं और यहाँ पुराने पुराने मॉनेस्ट्री जो बिखर गए हैं जिसको रिपेयरिंग करने का आवश्यकता है, उन लोगों के लिए भी हमने काफी राशि बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। कई स्कीम हमने दे चुके हैं और कुछ देने वाले हैं। उसी प्रकार से लेक अंदर में, दस्कार के अंदर में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ इसलिए एक रिमार्क कर रहा हूँ ताकि आपको भरोसा होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो विशेष बुद्ध धर्म के लिए और जो हिमालयन बुद्धिस्ट के लिए जो उन्होंने जो एक अपना मन में प्रायोरिटी जो दिया है, और हमारा जो नीचे वाला जो बौद्ध है, जो हिनायन वाला थेरावादा ग्रुप है, उनके लिए भी विशेष ज्ञान जो दिया है उसको कॉम्बाइन करके हम एक बुद्धिज्म का रिवाइवल का एक माहौल बनाया है। वो इसलिए जरूरी है, आप लोग को समझना होगा कि दुनिया में जितना बौद्ध है, किसी भी देश में कोई भी बौद्ध है, उसका सबसे बड़ा सपना एक ही है, आपको जानना चाहिए। एज एन इंडियन, एज ए हिंदुस्तानी, हम सबको ये समझना, हर एक बौद्ध दुनिया का एक तमन्ना लेके चलता है कि अपने जीवन काल में एक बार भारत जाना है, इंडिया जाना है और उस धरती को चूमना है जिस धरती में बुद्ध धर्म का जन्म हुआ है। तो हमारा ड्यूटी है कि हम लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, लेकिन हम खुद ही बुद्ध का टीचिंग को नहीं मानेंगे, हम ही बर्बाद के रास्ते पे चलेंगे तो दुनिया क्या सोचेंगे। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो बौद्ध धर्म को अपनाया, सबसे बड़ा लाइन उन्होंने यही कहा कि मैं ऐसा एक धर्म में जाना चाहता हूँ, ऐसे धर्म को अपनाना चाहता हूँ जो धर्म सिर्फ पुराने भारत का पहचान नहीं, बल्कि भारत के वो आध्यात्मिक सोच, हर एक भारतीय को बुद्ध भगवान के सोच के साथ मिल पा, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दुख हो, सुख हो, बीच मिडिल पाथ से हम अपना जीवन जिएंगे और अपना देश को हम सेवा करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लद्दाख अपने आप में बहुत पवित्र स्थल है, और लोग जब लद्दाख में आते हैं तो एक इम्प्रेशन होते हैं कि लद्दाख के लोग पीसफुल है, कॉम्पैशनल है, लविंग है, तो बुद्ध का टीचिंग है वही लोग यहाँ उसी को जीते हैं। तो लद्दाख में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जिससे लद्दाख का कैरेक्टर पे नुकसान हो। लद्दाख का जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है, हम तो करेंगे, मदद करेंगे, मगर लद्दाखी लोग का ही प्राइमरी ड्यूटी है कि लद्दाख का खास चीज जो है उसको बनाए।

रखना है, उसका पहचान को बनाए रखना चाहिए। संस्था के लोग हैं और आईबीसी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, जिसके माध्यम से इंटरनेशनल लेवल में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, और कुशल बापूला रिंपोचे का जो मैसेज है उसको आगे ले जाने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। तालमेल के साथ चलेंगे तो हम समझते हैं कि कुशल बापूला रिंपोचे का जो टीचिंग है उसका बताए हुए रास्ते है उस पर हम चलेंगे, और बुद्ध भगवान का जो संदेश है वो दुनिया में हम पहुँचाने में मदद करेंगे।

दासंग इशाराए लता मंगेशकर तम भूपेंद्र ने किनारा फिल्मेलो सनचच फिल्मी ल्यूटिक्रिम बेना कसता आरती मुखर्जी ने मासूम फिल्मेलो सनचादेन लूर सुमकन गुलजार यालुआस डिक्कन आदि बर्मन।

फिल्मी लियो टिक्रिम पेना कसता लता मंगेशकर तं नीरज ने शर्मीली फिल्म लो सनजा दिन लूट सुमकन नीरज यंग लुआंस डेकन एस डी बर्मन।

0: ngase akashwani leni shunjik ta in pito chu tuk chaduk kasata akashwani de leni hindi ta angrezi na nasul sanachar
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से, और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता

जय हिंद। फौजी भाई सुनेंगे अपने इस वक्त के कार्यक्रम में फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत गुदगुदी फिल्म से सुनते हैं, कुमार सानू की आवाज़ में। गीतकार है योगेश और संगीतकार है बपी लहरी।

अगला गीत लीजिए, सुनिए सोनू निगम और सारिका कपूर की आवाज़ों में तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

ये फिल्मी गीत अब मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफएम पर आकाशवाणी ले से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अकेले हम अकेले तुम फिल्म से गीत। गीतकार है मशरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है अनु मलिक।

अगला गीत लीजिए, सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में जोश फिल्म से। गीतकार है समीर और संगीतकार है अनु मलिक।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए उदय नारायण और अकाई याग्निक की आवाज़ों में मासूम फिल्म से गीत। गीतकार है गुलजार और संगीतकार है आर डी बर्मन।

0: dasangi charain sering norzo me salkani lurik sanajats mache akashwani lene shwin chiktain kasata tuso chapis tingne akashwani srinagar ne urdina na sultan tapsara sanajat
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं तजुमुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समाज को मुनशात की लानत से पाक करने का दोहराया अज़्म। मुनशात मुखालिफ कार्रवाइयों में 68 लाख रुपए मालियत की सरकारी जमीन मुनशात फरोशों से बाजियाब। एलजी ने त्रहगाम कुपवाड़ा में कई तरक्याती प्रोजेक्टों को किया काम के नाम

0: एक सोशल मीडिया पोस्ट पर समाजी इंसाफ की मरकजी वजारत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 5.5 लाख अफराद ओपियोइड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 1,70,000 अफराद नशीली अद्वियात और तकरीबन 1.5 लाख अफराद चरस के इस्तेमाल की आदत में मुबतला हैं। वही दुरामान पर्रा ने कहा कि इस लत में मुबतला अफराद को कार्रवाई का निशाना बनाना मसले का हल नहीं है, बल्कि ड्रग स्मगलरों और इसका कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मतलूबा नतायज हासिल करने के लिए अलामत के बजाय इस संगीन मसले के असल जड़ को खत्म करना होगा। पदयात्रा में शिरकत के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में वाइब्रेंट विलेज त्रिहगांव का दौरा करके वहां मुतादी तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कई एक का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने लोगों के तरक्याती मसाइल और जरूरत का भी जायजा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मरकजी सरकार सभी इलाकों की तेज तर तरक्की को यकीनी बनाने की वादबंद है। उन्होंने कहा कि हर एक गांव को बेहतर सड़क राबते, जदीद स्कूल और नौजवानों के लिए मसावी मौके फराहम करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है।
1: जम्मू कश्मीर प्रशासन का पहला महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि त्रिहगांव तथा अन्य 15 वाइब्रेंट विलेजेस के में हर सरकारी योजना का 100% सिचुएशन हो जाए। हर सरकारी योजना का हर पात्र व्यक्ति हर घर तक हर परिवार तक पहुंच सके, ये सुनिश्चित प्रशासन कर रहा है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये प्राथमिक दायित्व उनका हमारा होना चाहिए कि समाज का हर वर्ग केंद्र सरकार की और जम्मू कश्मीर प्रशासन की योजनाओं का लाभ इन गाँव में पा सके। कुपवाड़ा में वाइब्रेंट विलेज का कोई परिवार न छूटे, इसकी कार्य योजना जिला प्रशासन ने बनाई है। हमारे सभी सीनियर अफसरान अपने अपने डिपार्टमेंट के कामों का भी रिव्यू करके इन्हें सिचुएट कराएंगे। लाइवलीहुड जनरेशन के लिए भी जिला प्रशासन ने बहुत ही सराहनीय पहल यहाँ प्रारंभ की है।
0: इस मौके पर त्रिहगांव के असेंबली मेंबर मीर सैफुल्ला, जल शक्ति महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शालीन काबरा, बिजली महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अश्वनी कुमार, पीडब्ल्यूडी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनिल कुमार सिंह, आईजीबी कश्मीर वीके बीरधी और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। ईंधन को बचाने के वजीर अजम नरेंद्र मोदी की अपील के तनाजुर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी कॉन्वॉय को निस्फ करने का फैसला लिया है। देही तरक्की महकमा और जेंट के रूरल लाइवलीहुड मिशन जम्मू कश्मीर में खवातीन के मियारी हयात में बेहतरी लाने और उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए खातिरखा इकदाम कर रहे हैं। इन महकमों ने यूटी की 8,10,000 खवातीन को मुतहरिक करके 96,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप कायम करके उन्हें 3,106 करोड़ रूपये के बैंक कर्जे फराहम किए। इतलात के मुताबिक लखपति दीदी पहल के तहत सालाना 1 लाख रूपये की आमदन हासिल करने वाली खवातीन की तादाद 2,30,000 से तजावज कर गई है। वजीर अला उमर अब्दुल्ला ने इस अहम पेशरफ्त के लिए इन दोनों महकमों को मुबारकबाद दी है। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने भी खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उनकी शमूलियाती तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की काविशों की सराहना की है। खुराक और उमूरी सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान आने वाली ईद उल अजहा और मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में गजाई अजनास और लाजमी खदमात की दस्तियाबी का जायजा लिया। इस मौके पर जानकारी दी गई कि जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में गजाई अजनास, LPG और पेट्रोलियम अशा का वाफिर स्टॉक मौजूद है। उन्होंने हिदायत दी कि अय्याम मुतबरका के दौरान लोगों को वाफिर मकदार में गजाई अजनास दस्तियाब रखी जानी चाहिए। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: सफिशियंट स्टॉक है डिपोज पे, फेयर प्राइस शॉप्स पे, सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स आए। पहली बार हुआ कि 1.5 महीना पौने 2 महीना एडवांस में हमने मुहर्रम की तैयारियां और ईद उसकी तैयारियां भी हैं, और मुझे लगता है कि एडवांस ही सब कुछ करना है। जियो पोलिटिकल हालात जो है वो आप ही नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे, हम भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक जंग बहुत बड़े मुल्कों में लगी हुई है, उसका असर तो ऑब्वियसली आजकल एंटायर वर्ल्ड इज अ विलेज हम पे पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमें पूरी तैयारी करनी है और हर चीज के लिए तैयार रहे।
0: ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर का दौरा करके वहां दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि गुलमर्ग मुल्क का एक अहम सियाहती मकाम है और इसे जम्मू कश्मीर के सियाहती मंजरनामे में कलीदी अहमियत हासिल है। उन्होंने वहां सहूलियात को मजीद दवाम बख्शने की जरूरत पर जोर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाहों को इस जानिब रागिब किया जा सके। इस मौके पर इलाके के मेंबरान असेंबली भी मौजूद थे। दरअसल वजीर मौसूफ से आज श्रीनगर में कई अवामी वफूद और अफराद मुलाकी हुए और उन्हें वजीर मौसूफ अपने अपने मसाइल से आगाह किया। वजीर ने उनके मसाइल गौर से सुने और यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने आज श्रीनगर में फ्यूचरिस्टिक एनर्जी फॉर कंज्यूमर से मुतालिक एक तकनीकी सेमिनार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई PM सूर्य घर योजना फायदा बख्श साबित हो रही है।

0: स्कूल एजुकेशन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 10वीं और 12वीं जमात के सालाना प्राइवेट बाई एनुअल 2026 इम्तहान की इम्तहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10वीं और 12वीं के इम्तहानी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 20 मई मुकर्रर की गई है, जबकि लेट फीस के साथ फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 26 मई मुकर्रर की गई है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज और कश्मीर वैली थिएटर के इश्तराक से आज अब्दुल अहद आजाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज बिमना में शेख मोहम्मद हनीफ का तहरीर करदा थिएटर ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट पेश किया गया। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब 5:30 पर और गुरूबी आफ्ताब 7:25 पर होगा। के साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीर में नश होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समीन पेश खदमत है तबसरा।
2: समीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं बसातुल कुल। जम्मू कश्मीर में नशे से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम गुज़श्ता 11 अप्रैल से मुसलसल जारी है और गुज़श्ता रोज इस मुहिम का एक माह मुकम्मल हो गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के अलावा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में पद यात्रा और अवामी बेदारी प्रोग्रामों में शिरकत की, जिसने रफ्ता रफ्ता एक सरकारी मुहिम से बढ़कर अवामी तहरीक की सूरत अख्तियार कर ली है। ये इस हकीकत का सबूत है कि मनुष्यात के खिलाफ जंग सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की मुश्तरक जिम्मेदारी है। समीन, मनुष्यात आज के दौर में नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। बेरोजगारी, जहनी दबाव, समाजी बेचैनी और गलत सोहबत जैसे अवामी नौजवानों को इस दलदल की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसे हालात में अगर हुकूमत अवाम को साथ लेकर बेदारी मुहिम चलाती है तो इसके मुस्बत नतीजे सामने आना फितरी अमर है। जम्मू कश्मीर में जारी ये मुहिम इसी शोर की एक मजबूत मिसाल बनकर उभर रही है। गुज़श्ता 31 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर भर में हजारों अवामी रसाई तकरीबात का इनेकाद किया गया, जो इस मुहिम की वसत और संजीदगी को जाहिर करता है। इसी अरसे में 44,000 से जायद ओपीडी मरीजों का इलाज किया गया। तकरीबन 700 मनुष्यात फरोशों और स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मनुष्यात की सप्लाई चेन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई गई। ये एदाद और शुमार वाजा करते हैं कि इंतजामिया महज नारों तक महदूद नहीं बल्कि अमली सतह पर भी मुतहरिक किरदार अदा कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की यह हिदायत नहायत अहम और बर वक्त के अगले 69 दिनों में जम्मू कश्मीर के हर स्कूल, कॉलेज और इबादतगाह में मनुष्यात के मौजू पर हफ्तावार फैमिली डायलॉग मुनाकिद किए जाए। दरअसल मनुष्यात के खात्मे के लिए सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे काफी नहीं होते बल्कि घर, तालीमी इदारे और मजहबी मराकज भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। वालदेन, असातिजा, उल्मा और समाजी कारकुन अगर नौजवानों के साथ मुसलसल मुकालमा जारी रखे तो कई जिंदगियां तबाही से बचाई जा सकती है। जरूरत इस बात की है कि इस मुहिम को वक्ती सरगर्मी तक महदूद न रखा जाए बल्कि इसे मुस्तकिल समाजी तहरीक बनाया जाए। नौजवानों को खेल, तालीम, हुनर और मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करना वक्त की अहम जरूरत है। तबसरा खत्म हुआ। शब खैर।
3: नशे आकाशवाणी लेने शुंचिकताइन सानी छुसत गया छादु कसता बल्टी डिक्रिम मिंतो के छरबू सनाजा दिन डिक्रिम फुलकन कनीस फातिमा याम डिक्रिम एकोटिक जातकन सोनमांचूक।

0: dasangi jarai dashingi ma tan thupa gune sal kane jabre lurik sanajats
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर?
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
6: जी,
5: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
6: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
5: पर ये होगा कैसे?
6: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
5: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
6: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
5: बस
6: बस
5: समझ गया।
6: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: dasange jarai tashingi ma tan thopa gune sal kane jabre lurik sanajats ngashe akashwani lene join chik tain chani chuzot ke tans karma jibju janga chadu kasata akashwani dali ne samachar sandhya gui ka news at 9 yang gudans karma join ka urdina nasul sanajat
1: मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वर यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ

0: फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी

0: जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit,
2: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: People to people connect।
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: The visit to the four European countries.
2: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप्स और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से तीन भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी

0: सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi,

0: Jaishankar also met his Brazilian counterpart Mauro Vieira and exchanged views on bilateral, regional and global issues. The External Affairs Minister said India values Brazil's support and perspectives on India BRICS chairship. Senior officials from Iran, Kazakhstan, Nigeria and Uzbekistan have arrived in New Delhi to attend the two-day BRICS foreign ministers meeting beginning tomorrow. US President Donald Trump arrived in Beijing today for a high-stakes summit with his Chinese counterpart Xi Jinping. During their two-day talks beginning tomorrow, the two leaders are expected to discuss a range of critical issues, including the war involving Iran, US arms sales to Taiwan, trade and artificial intelligence, and tariff amid growing economic and technological rivalry between the world's two largest economies. The US president has brought along several top business and technology executives on his visit to China, underscoring the importance of economic and technological issues in bilateral relations. In weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged two medals, a silver and a bronze, at the Asian Senior Championships in Gandhinagar today. Gyaneshwari won a silver in the snatch section in the 53-kilogram category and then an overall bronze medal in the event with a combined lift of 194 kilograms. In Thailand Open Badminton, star shuttlers PV Sindhu, Lakshya Sen and Kidambi Srikanth progressed to the pre-quarterfinals of singles events in Bangkok. In women's singles, the two-time Olympic medalist PV Sindhu defeated Tung Chiu Tong of Chinese Taipei 21-9, 21-12. She will take on Amalie Schultz of Denmark in the round of 16 tomorrow. Young Devika Sehag outclassed world number 26, Natsuki Nedera of Japan. She will meet Thai player Pichamon Opatniput. In another match, Malvika Bansod beat Wen Yu Tsang of Canada. She will meet Chan Yufei of China. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions over West Madhya Pradesh and West Rajasthan for the next 2 days. East Rajasthan, Gujarat and Maharashtra are expected to reel under heat wave conditions tomorrow. The weather agency also predicted heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet increases minimum support prices, MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NETUG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes. The CBI lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। काबीना ने कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने से मुताल्लिक 37,500 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों को फरोग दिए जाने को भी मंजूरी दी है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 के पेपर लीक के सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लिया है। मुख्तलिफ रियासतों में छापों की कार्रवाई जारी है। वजीर आजम मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी के वज़राए आला और दीगर रहनुमाओं ने भी अखराजात को कम करने से मुताल्लिक इकदाम किए हैं। मगरबी बंगाल हुकूमत ने भर्ती के सिलसिले में घपलों की तहकीकात सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। उसने जरूरी सामान की नकलो हमल पर सभी बैन रियासती पाबंदियां खत्म कर दी हैं। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी और कांस्य का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। इक्तिसादी उमूर से मुताल्लिक काबीना कमेटी ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफे को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात